0: कई कोर सस्य सूर नखत्र कई कोर देव दानव इंद्र सिर छत्र
1: समगरी अपने सूत धारे नानक जिस जिस पावे तिस तिस नस्तारे
0: कई कोर राजस्थान कई कोर वेद प्राण सिमरत अर सासत

0: संते संचाल अवर त्याग बिख्या जंजाल।
1: तन तन कहे सब कोई मुख उजल हर दर गए सोए।
0: व्यापार बिरला व्यापारे नानक ताके सद बलहारे।
1: चरण साथ कोई तोय तोय पियो अर्प साथ को अपना जियो।
0: साध की तूर करो स्नान साध ऊपर जाइए कुर्बान।
1: सा सेवा वडभागी पाइये सा संघर कीर्तन गाइये।
0: बिगनते साधु राखे हर गुण गाए अमृत रस जाखे।

दर्शन सत सत के कन्हार, नाम सत सत ध्यानहार, शब्द सत सत प्रभ भगता, सुरत सत सत जस सुनता, सत स्वरूप हृदय जन मानिया, करन करावन तिन मूल पछानिया, ऐते निर्भो होए बसाना, जिस ते उपजा तिस माहे समाना,

0: सिमर सिमर सिमर सुख पावहु, आप जपहु अवरे नाम जपावहु।
1: आप जपो अवर नाम जपाओ, भगत पाए तरिए संसार।
0: बिन भगति तन होसी छार, सर्व कल्याण सुख निध नाम, बूढ़ जात पाए विश्राम।

प्रभ बख्शन दीन दयाल, भगत वत्सल सदा कृपाल। आद पुरुष कारण करतार, भगत जना के प्राण आधार।

0: शास्त्र गोतक किस पूछत लेख।
1: जब नाथ निरंजन गोचर गादी, तब कौन छुटे कौन बंधन बादी।
0: अपने आप आप ही अचर जा, नानक अपन रूप आप ही अपर जा।
1: जय निर्मल पुरख

0: का त्रास निवरिय।
1: जो सदा हमारे पश्चात
0: हारे साहिब संत सहाय प्यारे
1: के हंता
0: काल पाए ब्रह्मा बपतरा काल पाए।

0: सब जगत बनायो, देवता चक्षण उपजायो।
1: आदम देखे अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा।
0: नमस्कार तिसी को हमारी, सकल प्रजा जन आप सवारी।
1: शिवगन को सब गुण सुख दियो, सतन को पल मोह बद कियो।
0: कट कट के अंतर की जानत, पले परे की पीर पछाणत।
1: चीती ते कुन चढ़िया स्थूला, सब पर कृपा जिस कर फूला।
0: संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी।
1: एक एक की पीर पछाने, कट कट के पट पट की जाने।
0: जब कर करा कर तारा, प्रजा तर दब देहे अपारा।
1: जब या कर्त कर तो कबू, दुमै मिलते ते सबू।
0: जेते बदन श्रेष्ठ सब तारा।

0: कर पाहुन अनुमानत महामूर्ख चपे न जानत।
1: महादेव को कैच सदाशिव निरंकार का चीन नह पिवर।
0: आप अपनी बुद्ध है जेती बनत पेन पेन तुह तो तेती।
1: तुम्हारा लखन राय पसारा के बिल सजा प्रथम संसारा।
0: एक रूप अनूप स्वरूपा रंग पे और आप के ही पूपा।
1: अंदर जेर से तचकीनी उत्पज खान बहो रच दीनी।
0: कहूँ फूल राजा हुआ बैठा कहूँ सिमट पे शंकर खैठा।
1: सिगरी सिर सिखाए चंपव आज गाज स्वरूप से अंपव।
0: रक्षा मेरी तुम करो सिख बार सिख संगरो।
1: दोषी दयो जो पाता सकल मलेश करो रण काटा।
0: जी अस्तु तब सरनी परे तिनके दोष दुख तुहा मरे।
1: पुरम जन भग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे।
0: जो कल को एक बार दया है ताके काल निकट न आए।
1: रक्षा तोय ताई सब काला दोष अरिष्ट रहन तत्काला।
0: कृपा दृष्टन जाहे निहर हो ताके ताप तनक में हर हो।
1: रित सिद्ध कर्मो सुख होई दुष्ट सास्वय सकै न कोई।
0: एक बार जिन तुम्हें संपारा काल फांस देता है उबारा।
1: जिन्हें नाम तिहारो कहा दार दुष्ट दुख दे रहा।
0: कर्क केत में शरण तिहारी आप हाथ तैल हो उबारी।
1: सर्व ठोर मोह सहाय दुष्ट दुख दे लहो बचाई।
0: कृपा करी हम पर जग माता ग्रंथ करा पूरन सब राता।
1: कल भी सकल देह को हटता दुष्ट दुख किन को शय करता।
0: श्री अस्तु जप पे दयाला पूरण करा ग्रंथ तत्काला।
1: मन बांच फल पावे सोई दुख न दिसे व्यापत कोई।
0: अड़िल सुनाए गुंग जो याहे सुरस।

बंदों कर अनुराग। श्री गुरु शब्द कमाई जिन जित पंच विकार। तीन संतन का वंदना सिर चरणन पर तार। एकंकार सतगुरु तिह प्रसाद सच होए। वाहिगुरु जी की फतेह है।

तनिता बंध मुक्त कह किस को कहनी। जय भी कह हर अघम अपार तब नर स्वर्ग कह कौन अवतार जब निर्गुण पर सहज सुभाई तब शिव सकत कह कित डहाई। जय भी आप है आप अपनी जो तर तब कम निडर कम का डर अपन चलते आप करने हार नानक ठाकुर अघम अपार अविनाशी सुख अपना संत जन्म मरण कहु कह अविनाशन जब पूर्ण करता प्रभ सोई तब जम की त्रास कहो कि सोय जब अवगत या गोचर प्रविका तब चित्रगुप्त के पूछत लेख जब नाथ निरंजन अगोचर गति तब कहूँ छुट्टी कौन बंधन बाधी।

तह कौन कौ मान कन अभिमान जह स्वरूप केवल जगदीश है तह शाल चतर लगत कह गीस है जह जो स्वरूप जो संग समाय वह तह किसै भूख अंतरता कन करावन करने नान कर दिकाना समाय जब अपने शोभा अपन संग बनाई तब कवन वाय बा मित्र सत पाई जह सर्व कला आप है परवीन तह वेद कदेव कह को जीन जब अपन आप आवर तार तब सघन अब सघन कह विचार जह अपन ऊजा पनाब नीरा तह कौन ठाकुर कौन कहिया चीरा बिस्म बिस्म रह बिस्मा नानक अपनी गत जान हो आप जह अशालया शेद अभेद समाया ऊह किस व्याव माया उसको आप आदि स देहु गुण का नाह प्रवेश जह ही कह एक भगवंता तह कौन चंद लागा चंदा जह अपन आप आपति यार तह कौन कथ कौन सुन ने हर बहु व्यान दूज दूज नानक उसको आप पाहु जा जह आप रचो प्रपंच अकार देह गुण मह गुण विस्तार पाप तह पई कहावत गुण रघो सुरवंश अवताल जाल माया जंजाल होम मोह परम व्यापार दूसुमान अपमान अनक प्रकार की अवख्या नापन खिलाव कर दिखा खेल संकोचा तो नानक कह जह अवगत भगत तह आप जह पासरा पासार संत प्रताप दोह पाह कह आप है तनि उनकी सुभा नुह बनी आप है कौत कर आनंद चो जा पहरा पुग निर्जोग जह पर्वत अपनाय लावे जिस पावे तहकील खिलावे भी सुमारिया था घनता तो लै ज्यों बुलाव त्यों नानक दाह बोले सलोक सलोक जी आ जंत की ठाकुर आप वर्तन हार नानक को बसरिया दूजा कह दृष्टा राष्ट्रपति आप कथे आप सुनने हार आप ही का विस्तार जात पावे तुम सृष्टि उपाय आप न पांड ले समय तुम ती पिंद नहीं किशोए आपन सूत सब जगत पुरे जाको प्रभ जीव आप जाय सचना सो जन पाए सो सम दर्शी तत् कवि तना सब श्रेष्ठ कह जीता जी आ जंत्र सबता कह दीन दयाल अनाथ पनाथ जिस राखे दह कुए न मार सो मुआ जमन बसर दहता जवर कह कु जाय सब श्री कंद रंजन राय जी की जुगत जाक सब हाथ अंतर बहर जन साध गुण निदान बेअंत अपार आनंद सदा बलहार पूर्ण पुरह दयाल सब उपरोध कृपाल अपने कर्तव्य जन आप अंतर जामी रहे व्या प्रत पाल जीवन वह पाय जो जो रचो सो तिहत जेह पावे तलाय मिलाय भगत करे हर के गुण गाय मन अंतर विश्वास कर मान्या कर नार नानक जानिया जन लाग हरि कह नाय दस की आसन बिरति जाय सेव का सिवा बनाय हुकुम बुझ परम पद पाए ते ऊपर नहीं विचार जा कमन बस्यंकार बन तोर पै निर्वैर अंदन पूजन गुरु के पैर लोग सुखी पर लोग सोहेले नानक हार प्रभाप मिले सात संग मिल करो आनंद गुण गाव प्रभ परमानंद राम नाम तद करो विचार दुर्लभ देख का करो अदार अमृत भजन हर के गुण गाव प्राण तन का है स्वभाव आठ पहर प्रापी खाहु नीरा मिटा गुण बिन सह अंधेरा सुन उपदेह हृदय साव मन छे नानक फल पाव हलत पलत दोए लिहो स्वाय राम नाम अंतर वर तार पूरे कर की पूरी दीखे आज मन बसा तो साज प्रीखे मन तन नाम जा पहले बलाई

अबंध हैं, निर्बूज हैं, असूज हैं, अकाल हैं, अजाल हैं, अल्लाह हैं, अजह हैं, अनंत हैं, महंत हैं, अलीक हैं, निरश्रीक हैं, निर्लंब हैं, असंभ हैं,

धन काम आदि दुत प्रचंड गत अखंड आलिश्य कर्मा दृश्य धर्म सर्वै प्रनाढ़ अंडन बाढ़ चाचरी छंद त्वै प्रसाद गोबिंदे मुकंदे उदारे अपारे हरियं करियं निरनामे अकामे पुजंग प्रयात छंद चतर चकर करता चतर चकर हरता चतर चकर दहने चतर चकर जहने चतर चकर वर्ती चतर चकर परती चतर चकर पाले चतर चकर काले चतर चकर पासे चतर चकर वासे।

पवित्र पृथ्वी स दिश अदृश अकृश भगवती शांदो द्व प्रसाद कथते के अशज देश है के अभिज भिष है के अगंज कर्म है के अपंज भरम है के अभिज लोक है के अदित सुख है के अवतूत वर्ण है के विभूत करण है के राजंग प्रभा है के धर्मंग तुजा है के अशोक वर्ण है के सर्वा अपर्ण है के जगतंग कृति है के शत्रंग क्षत्रिय है के ब्रह्मंग स्वरूप है के अनुभव अनूप है के आद अदेव है के आप भीव है के चित्रंग विहीन है के अधीन है के रोजी रजा कर ही मेरे हक है के पाक वे अव है के गैबुल गैब है के अफुल गुनाह है के शाह अनशाह है के कारण कुनंद है के रोजी देहंद है के राजग्रही है के कर्मंग करीम है के सर्वंग करी है के सर्वंग दरी है के सर्वत्र मान्य है के सर्वत्र दान्य है के सर्वत्र गौन है के सर्वत्र पावन है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र भेष है के सर्वत्र राज्य है के सर्वत्र साज्य है के सर्वत्र दीन है के सर्वत्र लीन है के सर्वत्र जाहु के सर्वत्र पाहु के सर्वत्र देश है के सर्वत्र भेष है के सर्वत्र काल है के सर्वत्र पाल है के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र भेखी के सर्वत्र भेखी के सर्वत्र काज्य है के सर्वत्र राज्य है के सर्वत्र सुख है के सर्वत्र भुख है के सर्वत्र त्राण है के सर्वत्र प्राण है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र भेष है के सर्वत्र मान्य सदैव प्रधान है के सर्वत्र जाप्या के सर्वत्र थाप्या के सर्वत्र पान है के सर्वत्र मान है के सर्वत्र इंद्र है के सर्वत्र चंद्र है के सर्वंग कलीम है के परम फहीम है के आकल अलाम है के साहिब कलाम है के हुसन रजू है तुम अमर रजू है मेसु सलाम है सलिख तुम उदाम है गरीब सिकस्त है गरीबुल परस्त है बिरंदुर मकान है जमीनुल जमान है तमीजुल तमाम है रुजुल निदान है रीफुल अजीम है रजायक यकीन है अनेकुल तरंग है भेद है अभंग है अजीज निवास है गरीमन खराज है निरुक्त स्वरूप है धर्मुगत विभूत है प्रभुगत प्रभा है सुरजुगत सुधा है सदा स्वरूप है भेदी अनूप है समस्तोपराज है सदा सर्वसाज है समस्तुल सलाम है सदैव अकाम है निर्बाध स्वरूप है अगाध है अनूप है ओम आद्रूप अनाथ स्वरूप है अनंगी अनाम त्रिभंगी त्रिकाम्य त्रिबर्घ त्रिबाध्य गंजे अगाध्य शुभ सर्वभाग्य सुसर्वा अनुराग्य

अनाद है, अनित है, सुनित है, अजात है, अजाद है, चरपट छांदो त्व प्रसाद, सर्वं हंता, सर्वं गंता, सर्वं ख्याता, सर्वं ज्ञाता, सर्वं हर्ता, सर्वं कर्ता, सर्वं प्राणं, सर्वं त्राणं, सर्वं कर्मं, सर्वं धर्मं, सर्वं युक्ता, सर्वं मुक्ता, रसावल छांद त्व प्रसाद, नमो नरकनाशे सदैवं प्रकाशे, अनंगं स्वरूपे, अपंगं विभूते, प्रमादं प्रमाथे, सदा सर्वसाथे, अगाध स्वरूपे, निर्बाध विभूते, अनंगी अनामे, निर्भंगी तरकामे, निर्भंगी स्वरूपे, सर्वं

कलंकार रूपे अलंकार अलंके नम आस आस्य नम भंग भंके अपंगी स्वरूपे अनंगीय नामे कृपंगी त्रिकाले अनंगीय कामे एक अक्षरी शांदम।

पारम हमरे दुष्ट सबै तुमका भू आभास दय मोहि बचावहु सुखी बसै मोरु परिवार सेवक सिख सबै करता राम मूरछा निज करदय करियै सब बैरन को आज संघरियै पूर्ण होए हमारी आसा तोर भजन की रह प्यासा तुम्हें शाड़ कोई अवर न त्याऊ जो बर चाहो सो तुम ते पाऊ सेव सिख हमारे तारिय है झुंझुनु सत्र हमारे मारिय है आप हाथ दय मुझ उबरिया मरण काल का त्रास निवरिया हु जो सदा हमारे पच्छा श्रिया स्तुति जु करिय हो रक्षा राख लेहु महे राखन हारे साहिब संत सहाय प्यारे दीन बांध दुष्टन के हंता तुमहु परि चतुर्दशकंता काल पाए ब्रह्मा बवतरा काल पाए शिवजु अवतरा काल पाए कर विष्णु प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा जवन काल जोगी शिव की ओ वेद राज ब्रह्मा ज्योति ओ जवन काल सब लोक सुवारा नमस्कार है तहे हमारा।

जब दुकर्ख करा करतारा प्रजा धरत तब देह अपारा जब आ करख करत हो कब हूँ तुम मैं मिलत देह धर सब हूँ जेते बदन श्रेष्ठ सब तार है आप आपनी बूझ उचार है तुम सब ही तरह तन रालम जानत भेद भेद अर आलम मैं

कहूँ सपट भयो शंकर इकैठा। शिगरी श्रेष्ठ दिखाया चंपहु आजुगा स्वरूप स्वयं पव अब रक्षा मेरी तुम करो। सिख उबार असिख संगर हो दोष जीते उठवत उत्पाता सकल मलेश करोरण काता। जी असुता शरणी परे तिनके दुष्ट दुख तो हवै मरे पुरख जवन पाग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे। जो काल को एक बार त्याए है ताके काल निकट नह ऐ है रक्षा होए ताहे सब काला दुष्ट अरिष्ट टरै तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाय निहर हो ताके दावतन कु मह हर हो रिद्ध सिद्ध कर्म सब होई दुष्ट छाह श्वैस।

तीर स्तद्रव ग्रंथ सुधारा स्वैया पाए गहे जब ते तुम रे तब ते कुं आंतरे नहीं आने ओ राम रहीम पुराण कुरान अनेक कह मत एक न महन्यो सिमृत शास्त्र वेद सब बहुपीत कह हम एक न जान्यो।

करे विचारिया। आनंद आनंद सब को कह आनंद गुरु ते जानिया जानिया आनंद सदा गुरु ते कृपा करे प्यारिया कर कृपा किलविख कट्टे ज्ञान अंजन सारिया अंदर हो जिनका मुँह टुटा जिनका शब्द सच्चा।